0: You were listening to an episode of our program Radio Sai Bhajan Classroom. This episode was first aired on the 14th of July 2016 as part of Thursday Live from Prashanthinilam on Asia Stream of Radio Sai Global Harmony. This program was hosted by Team Radio Sai's Bishu. Thank you and Sai Ram.
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
2: Bhagwan Sri Satya Sai Baba ne सन 1973 के ग्रीष्मकालीन कक्षाओं में श्री आदि शंकराचार्य विरचित भज गोविंदम पर महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। इन प्रवचनों में भारतीय आध्यात्मिकता और वेदों का सार भरा हुआ है, जिन्हें सबको सुनकर लाभान्वित होना चाहिए। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 20 जून 1973 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
3: भूमिका। भगवान बाबा अपने इस माधुर्यपूर्ण प्रवचन में जीवन में गुरु की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक आदर्श गुरु के तत्वों को उजागर करते हैं। प्रायः उद्धृत किए जाने वाले श्लोक गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः के आंतरिक अर्थ को भी स्वामी ने यहां स्पष्ट किया है। लौकिक विद्या की अपेक्षा आध्यात्मिक विद्या प्रदान कर उसे शिष्य की अनुभूति में लाने वाले गुरु को ही स्वामी महान एवं श्रेष्ठ मानते हैं। इसके लिए स्वामी गुफा में निवास करने वाले एक महात्मा का रूपक प्रस्तुत करते हैं। प्रवचन को समापित करते हुए भगवान बाबा छात्रों को हिदायत देते हैं कि तथ्यों को रटने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है, अतः तथ्यों का आचरण कर छात्रों को आध्यात्मिक संपत्ति से लाभान्वित होना चाहिए।

0: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Bilawal Mahalla Panjwa, man kya kehta, haun kya kehta, jaan parveen thagru pra mere, tisya gya kya kehta rahao, an bole kau tuhi pishan hai, jo jiyan mein hota, re man kae kahan lau dehke, jau pehti sang sunta, aiso jaan pae man anand, aan na biyo karta, कहो नानक गुर पहे दयारा हर रंग न कभू लहता बिलावल महला पंजवा निंदक ऐसे ही चर परी है एह निशानी सुनो तुम पाई जो कालर पीत गिरी है रहाओ जो देखे शिदर तो निंदक उमा है पलो देख दुख परी है आठ पहर चितव नहीं पहुंचे बुरा चितवत चितवत मरी है निंदक प्रभु पुलाया काल नेरे आया हर जन स्यों बाद उठरी है नानका रखाया प्रभु स्वामी क्या मानस बपरे करी है बिलावल महला पंजवा ऐसे काहे पूल परे करे करावे मुकर पावे पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ काज बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया मैं लपटाए जरे अंधकू मैं परयो परानी परम गुबार मोहे बंद परे कहो नानक प्रभो दयारा गुर पेटे काडे भा फरे बिलावल महला पंजवा मंतन रसना हर चीना पय अनंदा मिटियां देसे सर्व सुख मोखो गुरदीना रहाओ एआनप ते सब पई सियानप प्र मेरा दाना बीना हाथ दे रख है अपने को काहू ना करते कशकीना बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर पारोस है कहू ना मान्यो मन शीना बिलावल महला पंजवा गुरपूर मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बहराई गुरपूरे का जपया जाप कहां करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकि शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही बिलावल महला पंजवा सदा सदा जपिए प्रभ नाम जरा मरा कहीं दुख न व्यापै आगै दरगै पूर्ण काम रहाओ आप त्याग परिय नित सरणी गुर ते पाईऐ हो निदान जन मरण की कटिया फांसी साची दरगै का निशान जो तुम करहो सोई पल मानो मन ते छूटै सगल गुमान कहो नानक ता की शरण आई जा का किया सगल जहान बिलावल महला पंजवा मन तन अंतर प्रभ आही हर गुण गावत पर उपकार नित तिस रसना का मूल किश नाही रहाओ कुल समूह उदरेखन पीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना आनंद सेती बिखिया बन गाही चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही संत सेवक भगत हरता के नानक मन लागा है ताही बिलावल महला पंजवा तीरो देख तुम्हारे रंगा तुही स्वामी अंतर जामी तुही वसै साध कै संगा रहाओ खिन मैं थाप निवाजे ठाकर नीच कीड़ते करह रजंगा कबहू ना बिसरै हीए मोरे ते नानक दास ही दान मंगा बिलावल महला पंजवा अचित पूजा जो गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगे सर्ब जिया का है प्रतपाल रहाओ ਸਰਨ ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਸੁਖਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਬੜੋ ਦਇਆਲ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕਉ ਤਿਸਨੋ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਬਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਤਲਮਾਲ ਨਾਨਕ ਜਾਚਕ ਦਰਸ ਪ੍ਰਮਾਂਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਮਿਲੈ ਰਵਾਲ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕੋਟ ਜਤਨ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਮ ਦੂਤਨ ਕਉ ਤਰਾਸ ਅਹੇ ਰਹਾਓ ਜੇਤੇ ਪੁਨਾ ਚਰਨ ਸੇ ਕੀਨੇ ਮੰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਗਹਿ ਆਵਣ ਜਾਣ ਪਰਮ ਪਉ ਨਾਠਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦਹਿ ਨਿਰਪਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹੋ ਪਦਾਰਥ ਵਡ ਭਾਗ ਲਹਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਲੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹੱਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ ਰਹਾਓ ਕਾਢ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ ਖਿਰ ਮੈਂ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਤਾਕ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਤਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਰਹਿਓ ਸੋ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵ ਆਪੇ ਆਵਰਤੈ ਸਵਾਮੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ਰਹਾਓ ਆਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਓ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸ ਕੀਨੇ ਜਨ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਆਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਬਿਲਾਵਲ

नित नित हर त्याए। मैं हर गुण कहते पावनी कहिया, बार बार खिन खिन पल कहिए, हर पार ना पावै परे परैया। शास्त्र वेद पुराण पुकारै, धर्म करो खट कर्म दृढ़ैया। मनमुख पाखंड परम विगूते, लोभ लहर नाव पार बुढ़ैया। नाम जपो नामे गत पावो, सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया। होमै जाए ता निर्मल होवै, गुरमुख परचै परम पद पैया। एहो जग वर्ण रूप सब तेरा, जितला वैसे कर्म कमैया। नानक जंत वजाए वाजै, जित पावै तित राहे चलैया। बिलावल महला चौथा, गुरमुख अगमया गोचर ध्याया। हों बल बल सतगुर सतपुरखैया, राम नाम मेरा प्राण वसाए। सतगुर परसार नाम समैया, जन की टेक हर नाम टकैया। सतगुर की तर लागा जावा, गुर कृपाते हर दर लहिया रहाओ। एहो शरीर कर्म की धरती, गुरमुख मथ मथ तत कढैया। लाल जे वेहर नाम परगासिया, पांडे पाओ पवै तितैया। दासन दास दास होए रहिया, जो जन राम भगत निज पैया। मन बुद्ध अर्प धरो गुरे आगै, गुर प्रसादी मैं कथ कथैया। मनमुख माया मोहे वे आपे, एहो मन तृष्णा जलत दिखैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया, अग्न बुझी गुर शब्द बुझैया। एहो मन नाचै सतगुरे आगै, अनहद शब्द तुन तूर वजैया। हर हर उसत करै दिन राती, रख रख चरण हर ताल पूरैया। हर कै रंग रता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया। निज कर धार चुवैत निर्मल, जिन पिया तिन्ही सुख लैया। मन अठ कर्म करै अभिमानी, ज्यो बालक बालू कर उसरैया। आवै लहर समुद सागर की, खिन मैं भिन्न भिन्न टै पैया। हर सर सागर हर है आपे, एहो जग है सब खेल खिलैया। ज्यों जल तरंग जल जलै समावै, नानके आपे आप रमैया। बिलावल महला चौथा, सतगुर परचै मन मुंदरा पाई। गुर का शब्द तन पसम दृढ़ैया। अमर पिंड पहे साधु संग, जन्म मरण दो मिट गैया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करो मधुसूदन माधव। मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहाओ। तजै ग्रस्त भया बनवासी, एक खिन मनुआ टिकै ना टिकैया। तावत ताहे तदे कर आवै, हर हर साधु शरण पवैया। तिया पूत छोड़ सन्यासी, आसा आस मन बहुत करैया। आसा आस करे नहीं बूझै, गुर कै शब्द निरास सुख लहिया। उपजी तर्क दिगंबर होवा, मन दै दिस चल चल गमन करैया। पर पवन करै बूझै नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे, मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया। तृप्त संतोख मन शांत ना आवै, मेरे साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेतज उत्पुज, सब वर्ण रूप जी जंतो पैया। साधु शरण परै सो उबरै, खत्री ब्राह्मण सूद वैसो चंडाल चंडैया। नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन, औ जात रविदास चमयार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत, धन धन्ना जट सैन मिलया हरदैया। संत जना की हर पैज रखाई, भगत वछल अंगीकार करैया। नानक शरण परे जग जीवन, हर हर कृपा तार रखैया। बिलावल महला चौथा, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हों आकल बिगल पई गुर देखे। हों लोट पोट होए पैया रहाओ, हों निरखत फिराओ सब दे दिसंत।

मैं प्रभ देखन को बहुत मन चाहिया, मन तन काट दियो गुरे आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाई। कोई आण संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मंत्र मीठ लगैया, मस्त काट दियो चरणा तल, जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै, गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वछल उवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया। खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हर कंठ है बनया, मन मोती चूर बड गहन गहनैया। हर हर सरदा सेज विशाई, प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश की जय, सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया। कियो सिंगार मिलन कह ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करै तेरे वस पैया। दयाधीन करो रख ले वो, नानक हर गुर शरण समैया। बिलावल महला चौथा, मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का, खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया। गुर देखे सरदा मन पूरी, ज्यों चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया, रहाओ रोम रोम मंतन एक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया, वैदिक नाटक देख भुलाने। मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया, हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम। जो बिन अमल अमली मर गैया, जिन को प्यास होए प्रभ केरी। तिने अवर ना पहावै, बिन हर को दुइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै, हौ तिस विटों बल बल घुम गैया। अनेक जन्म के विछड़े जन मेले, जा सत सत सतगुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकर, महल ना पावै मन मुख भरमैया। गुर गुर कर तो शरण जे आवै, प्रभ आए।

पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकर कृपा तारी। बहा पकर नानक कढ़ लैया। राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी घर बारवा। एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमलियाधार, हौं जाऊं सब बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, तजान कतै ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उधार, पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप बेकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी है बिस्माद, चख अनंद पूर्ण साद। नह डोलिए इतियूत, प्रभ से हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जमना पेखे नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल, प्रभ भगत वस दयाल। हर निगम लह ना पेव, नित करै मुन जन सेव। दुख दीन दर्द निवार, जा की महा बिखड़ी कार। ता की मितना जाने कोए, जल थल महियल सोए। कर बंदना लख बार, थक पर्यो प्रभ दरबार। प्रभ करो साधु तूर, नानक मनसा पूर। बिलावल महला पंजवा, प्रभ जन्म मर निवार। हार पर्यो द्वार, गह चरण साधु संग। मन मिष्ट हर हर रंग, कर दया लेहो लड़।

एकमेक अंकार निराला, अमरा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोजत खोजत कटकट देखिया, जो देख देखावै तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीसै, गुर कै शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जमदर बांधे आवन जाने, क्या लै आवै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पौ पाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर ना दूजा सिरजनहारा। तृतीया ब्रह्मा विष्ण महेशा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़े किस आखा दूर। चौथे उपाए चारे बेदा, खाणी चारे बाणी पेदा, अष्ट दशा खड़ती ने उपाए, सो बुझे जस्या बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंचभूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंगरा ते एक मरतूर, एक दर कर साचै देख दूर, झूठे कौ नाही पत नाओ, कबो न सूचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी परमै मुक्त ना होए, तव छूटै जां खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगत रड़ाए, खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, सबदे भेदे तौ पद पावै, कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साज समावै। सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सचरदै विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सच नी साणै ठाक ना पाए। अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमें मनुआ रहे आलिवलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए। नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महा बलवंडा, आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा, आज जुगा दी है पी होग, ओह परंपर करना जोग, दसवीं नामदान इशनान, अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल न लागै भ्रम पौ पागै, बिलम न टूट सका चै तागै, ज्यों तागा जग एवै जानो, अस्त्र चा अस्त्र जी साच रंग माणो, एकादशी करदै वसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै ब्रत आत्म चीनै, पाखंड राज तत् नहीं बीनै, निर्मल निराहार नेह केवल, सूचे साचे ना लागै मल, जै देखो तहे को एका, होर जियो पाए वेको वेका, फलो हर किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुंद्रा मन अवदूता, अहनस जागै कवै ना सूता, जागत जाग रह लिवलाए, गुर परचै तस्खाल ना खाए, अतीत पहे मारे बैराई, प्रणवत नानक तैं लिवलाई, द्वादशी दयादान कर जाणै, बाहर जातो भीतर आणै, बरती बरत रह नेकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम,
तीन पवन मैं एको जाना है, सब सुच संयम साच पछाण है, तेर सतरवर समुंद किनार है, अमृत मूल शिखर लिवतार है, डर डर मरै ना बूढ़ै कोए, निडर बूढ़ मरै पत खोए, डर मैं घर घर मैं डर जाना, तख्त निवास सच मन पाणै, चौदस चौथे थावै लै पावै, राजस तामस सत्काल समावै, ससियर कै कर सूर समावै, जो जूत की कीमत पावै, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बुझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन ज्योत हो लोई, कर कर वेखै करता सोई, गुरते दिसै सो तिस ही माहे, मनमुख पूले आवै जाए, घर दर थाप थिरथान सुहावै, आप पछाणै जा सतगुर पावै, जह आसा तह बिनस बिनासा, फूटै खप्पर दुबदा मनसा, ममता जाल ते रहै उदासा, प्रणवत नानक हमता के दासा, बिलावल महला तीजा वार सत, कर दसवां एको ओंकार, सतगुर प्रसाद आदित वार, आद पुरख है सोई, आपे वरतै वरना कोई, ओत पोत जग रया परोई, आपे करता करे सो होई, नाम रते सदा सुख होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हृदय जपनी जपो गुणतासा, हर अगम्या गोचर परंपर स्वामी, जन पग लग तिहावो होए दासन दासा रहाओ, सोमवार सच रया समाए, तिसकी कीमत कही ना जाए, आख आख रहे सब लिवलाए, जिस देवै तिस पल्लै पाए, अगमा गोचर लखिया ना जाए, गुर कै सबधार रया समाए, मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंदै लाया, आप बुझाए सोई बूझै, गुर कै शब्द दर कर सूझै, प्रेम भगत करे लिवलाए, हम मैं ममता शब्द जलाए, बुद्ध वारे आपे बुद्ध सार, गुरम करनी शब्द विचार, नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे हम मैं मल खोए, दर सच्चै सद सोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए, लाहा नाम पाए गुरुद्वार, आपे देवै देवनहार, जो देवै तिसको बल जाइए, गुर प्रसादी आप गवाइए, नानक नाम रखो और तार, देवन हारे कौ जयकार, वीरवार वीर परम पुलाए, प्रेत पूत सब दूजै लाए, आप उपाय कर वेखै वेका, सबना करते तेरी टेका, जी जंत तेरी शरणाई, सो मिलै जिस लहै मिलाई, शुक्रवार प्रवरया समाई, आप यो पाए सब कीमत पाई, गुरमुख होवै सो करै विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा, बिन बूझे सब पाओ है दूजा, शनिश्चरवार सौन शास्त्र विचार, हम मैं मेरा परमै संसार, मनमुख अंधा दूजे पाए, जमदर बाधा चोटा खाए, गुरप्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए, सतगुर सेवै सेवड पागी, हम मैं महार सच लिवलागी, तेरा रंगराते सहि सुभाए, तू सुखदा